महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा

की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म समृद्ध स्वामी श्री माधवानंद जी भगवान की जय।

जय श्री देव पुरुष महादेवा की जय धर्म सम्राट स्वामी मदवानंद जी भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय श्याला।

सुनो अरज गिरधारी ओ सतगुरु राखो लाज मारी, राखो लाज हमारी। अच्छा बोलियो, गुड। एक और बोलू, एक और बोलू, लिख दो।

पे लिख दो राम सिर पे नारायण लिख दो मुख पे लिख दो राम लिख दो मारे रूम मेरा लिख दो मारे रूम मेरा नैना में नरसिंह लिख कौन में गरु ज्ञान नैना नरसिंह लिख दो कौन में गरु ज्ञान लिख दो मारे रूम मेरा लिख दो मारे रूम मेरा आता मैं कमला पति लिख दो भुज पे लिख

ना गौरी साथ ले के नंदी साथ ले के आना आना गरुसा मेरे या आना आना गरुसा मेरे या।

0: Sridip Naran Bhagwan ki jai, Shri Sata Gurudeva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरत है।

श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देव पुरीश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, सत्य सनातन धर्म की जय।

0: दीप नारायण भगवान अलकपुरी समादेव देवपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की
0: सत्य सनातन
1: की जय
0: भारत माता की जय
2: विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर अनंतपुर जी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सब संत श्रीमुनि महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। आप सब भक्तों की जय।
1: महामंडलेश्वर स्वामी अवतारपुर जी महाराज की जय।
0: Dobrohut.
2: Good appetite.
0: And see you in the evening.
2: Uvidíme sa večer.
0: Many blessings from Gurudev.
2: Požehnania od Gurudeva.
0: Let's

मंत्र हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जपा कर यही महामंत्र हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। दीप नारायण भगवान की। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।

ईश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत ब्राह्मण्ड के रचयिता, सृष्टि के पालनकर्ता, घटघट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। आराध्य श्री गुरुदेव के शुभ चरण कमलों में कौटि कौटि साष्टांग दंडवत। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है कि हम यहां इस आश्रम के अंदर सत्संग में आए। ये हमारे पूर्व जन्म का अच्छा कार्य, अच्छा कर्म यहां लेके आया है। ब्लेसेड सेल्फ, ऑल डियर वंस राउंड द वर्ल्ड, द ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू फ्रॉम होली भारत, ब्यूटीफुल कलरफुल राजस्थान, पिंक सिटी, जयपुर के जोधपुर, जयपुर। वेलकम। टुडे सब्जेक्ट इज द नाद योग। वेदा से नाद रूप पर ब्रह्मा, वेदों में कहा गया है कि नाद रूप पर ब्रह्म, अगर परब्रह्म परमात्मा को देखना है कि वो कैसे हैं, तो उनका और कोई स्वरूप नहीं है, केवल नाद। द वाइब्रेशन, द रेजोनेंस, अनंत ब्राह्मण्ड, सहस्त्र सूर्य, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सन सिस्टम्स, एंडलेस स्टार्स एंड मून्स, ऑल इज क्रिएटेड आउट ऑफ द वन, द साउंड। शून्य काश, पूरे ब्रह्मांड की रचना, जिसके अंदर हजारों लाखों लाखों सूर्य मंडल हमारे ऋषि मुनियों ने कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले अपने ज्ञान शास्त्रों के अंदर लिखा है, बताया है। यहां तक कि एक योगी की चेतना 14 लोक 2100 ब्राह्मण्ड, ये जो 7 लोक बताए गए हैं, इनके परे 2100 सूर्य मंडल है, वहां तक योगी की चेतना पहुंच सकती है। उसके आगे जाने के बाद में वो स्वयं जो है वो फिर वापस नहीं आएगा। 14 लोक 2100 ब्राह्मण्ड, 14 different worlds and 2100 sun systems above that, the consciousness of the yogi can expand, and till that the awareness of in that consciousness can reach and come back and give the knowledge to us. Modern science try to come to the moon, try to go to the Jupiter or the Mars, which is within our sun system. But how the yogis went there, that is the evidence of the Hindustan's Bharat ki Sanskriti aur Bharatiya Yogi Muni Rishi Muniyo ki Shakti aur Gyan.
और वो जो कहा गया है कि एविडेंस विल नेवर डाई, कोशिश करते हैं लोग हमारा धन चुराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उनके पेट में पचता नहीं है। ऑल दिस दैट टाइम कॉल्ड द शून्याकाश, ए वॉइड डार्क ब्लू स्पेस, नथिंग इज इनसाइड, नथिंग। देयर अगेन शास्त्र सेड, वेदा सेड, एकोहम बहुश्यामी, आई एम वन एंड नाउ आई विल मल्टीप्लाई माई सेल्फ। क्या भगवान की इच्छा होती है? क्या भगवान इच्छा करता है कि मैं एक हूं, अनेक में बनूंगा? वो कौन है कहने वाला? देखा किसी ने? सुना किसी ने? लेकिन ऋषि मुनियों का कहना है, वो जो है जिसको हम कहते हैं कि भगवान ने कहा या जिसने कहा कि मैं एक अनेक में बनूंगा, वो एक जो है वो एकाकार, निराकार, निरंजन, नित्य, चिदानंद रूप स्वरूप, संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना, अनंत की चेतना, हरि अनंत, अनंत हरि कथा। दैट टाइम इन एंडलेस देयर अवेक इज पूर्णा, ए वाइब्रेशन, ए रेजोनेंस, दैट्स कॉल्ड द साउंड, एंड दैट साउंड वी कॉल ओम, अकार, उकार, मकार। थ्रू दैट रेजोनेंस व्हाट एवर इज विजिबल इन दिस यूनिवर्स, व्हाट एवर इज अनविजिबल बट यू कैन फील इन दैट, ऑल इज क्रिएटेड बाय दैट वन बिंदु, वन आकार, नाद बिंदु कला, नाद बिंदु, उस बिंदु से शुरुआत होती है, वह बिंदु अभी तक है। जिस समय आप मां के गर्भ में प्रवेश करते हो, उसमें सबसे पहला एक बिंदु केंद्र बनता है, वो हमारी नाभि है, और उसी के पास में आंत बनने लगती है, फिर रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर दूसरे अवयव और अंग शरीर के जो है बनते हैं। लेकिन बिंदु तो वो है नाभ, और वो जो है मां का गर्भ जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड है। मां की कोख जो है वो संपूर्ण आकाश तत्व है, और वो जीवात्मा जो है वो चैतन्य, उस परमात्मा का स्वरूप चैतन्य। तो जब कहा जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, वो कमल ये है कि विष्णु जल के अंदर रहता है, और वो जल के अंदर वही चेतना जो कि मां की शक्ति है वो रक्षा करना। भगवान विष्णु हम करते हैं, क्या करते हैं? रक्षा। ब्रह्मा इज अ क्रिएटर एंड विष्णु इज द प्रोटेक्टर एंड शिवा इज द लिबरेटर, नॉट अ डिस्ट्रैक्टर, बट ही डिस्ट्रॉयज द नेगेटिव, शिवा इज नॉट अ डिस्ट्रैक्टर। तो वह जो मां के शरीर के अंदर जो गर्भ बढ़ता है वही कमल है, और वही कमल जो है जब जन्म होता है बच्चे का, अभी भी उसी बिंदु से जुड़ा हुआ है, अनंत मां अंदर अनंत है। उपनिषद कहते हैं कि सबसे पहले भगवान मां है, मातृ देवो भव, वही कमल है, वही कमल बढ़ता है, और वही उसकी कई अलग से हमारे योग के अंदर वही ईडा पिंगला सुषुम्ना है, वही नाड़ी है, वही कमल खुलता है, ब्रह्मा वही ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा।
उसी नाद का स्वरूप जो है वो नाद, वो रेजोनेंस, दैट साउंड इज स्टिल रेजोनेटिंग कॉन्स्टेंटली बियॉन्ड मैनी सन सिस्टम्स एंड इन आवर ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी. देयरफॉर वेदा सेड यथा ब्राह्मणे तथा

पिंड दे, जो ब्राह्मण के अंदर है वो हमारे शरीर के अंदर है, और जो हमारे शरीर में नहीं है वो बाहर नहीं है। हर एक सेल्स हमारे बॉडी के जो है, हर एक अवयव हमारे शरीर के है, उसके अंदर में नाद है। वो सोनोग्राफी करते हैं ना साउंड के साथ में, हृदय की आवाज सुनाई देती है। एक मिनट में कितना लीटर हृदय खून फेंकता है, या डॉक्टर साहब बैठे कार्डियोलॉजिस्ट, उसने रॉन्ग मत बोलना। एक मिनट में 5 लीटर खून का दौरा करता कराता है हमारा ये हार्ट। ओ तो 24 घंटे में कितना होगा भाई पड़ियोड़ा, मैं बताओ, मैं तो पड़ियोड़ी को नहीं हूं। उस हार्ट का आपने कभी ध्यान रखा? कभी आपने हार्ट को कहा कि आप कैसे हो, आपको कैसा खाना चाहिए, मैं क्या खाऊं जिसे आप मजबूत और खुश रहो? हम हमारी जीवा के मुंह के स्वाद के कारण हमारे कोई शरीर के अवयवों का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। कभी आपके हार्ट को कहा कि तुम एक दिन विश्राम कर लो? मामला पूरा तो, अरे उसको विश्राम के लिए नहीं तो उनकी थोड़ी सहायता तो कर लो। आपका सबसे अच्छा सेवक आपका जो है वो सेवक है हमारा हार्ट। चलो नाद, इसीलिए हमारे 4 वेदों के अंदर एक और 5वां वेद है जिसका क्या नाम है, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है नाद योग है, और उसके अंदर में जो है ये नाद हमारे शरीर में जो प्रकट हुई है मानव के जीवन में, मानव की बुद्धि के द्वारा और मानव योग साधना करके उसको पहचान सकता है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। जब तक नहीं होता, नहीं तो नहीं होता है। एक छोटा दृष्टांत, देयर इज वन स्मॉल स्टोरी। गॉड हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन, वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। भगवान के बहुत सुंदर बाग था, बहुत अच्छा, और भगवान के वहां अच्छा निवास था, वहां भगवान रहते हैं। एवरी मॉर्निंग सुबह उठ करके भगवान अपने बगीचे में घूमने को जाते थे। अर्ली मॉर्निंग गॉड गेट अप एंड वॉक थ्रू द गार्डन एंड ही टचेज ईच एंड एवरी ब्लॉसम्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, ट्रीज एंड ऑल, जितने भी वनस्पति हैं भगवान उनके हाथ लगाते हैं, भगवान देखता है, भगवान चलते हैं, और जितने भी पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, वृक्ष हैं, सभी भगवान को कहते हैं गॉड आई लव यू, गॉड आई लव, भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूं, हे प्रभु हे प्रभु। और भगवान भी कहता है कि यस माय डियर आई लव यू, आई लव यू। भगवान भी हमारे से प्यार करते हैं। तो वहां एक बांस था, है भगवान के बगीचे में सभी है। सो देयर वॉज ए बंबू एंड बंबू वॉज इन सम कॉर्नर। तो बंबू भी दूर से कहता था बांस के, भगवान मैं आपसे प्यार करता हूं। भगवान आते कि हाँ माई डियर बंबू आई लव यू ऑल्सो वेरी मच। भगवान उस बांस को भी टच करते थे। फिर भी हमारे कुछ महापुरुषों ने कहा है कि बांस उगा भूमि पर और दुखी हुई बनराए, एक दिन ऐसा आएगा सबको देगा जलाए। जब कहीं बांस उगता है तो पूरी वनस्पति दुखी हो जाती है, क्योंकि बांस हवा से आपस में घिंचेगा और आग होगी, सबको जला देगा। बांस के अंदर 3 अवगुण है। बांस चाहे अपने चंदन के पास हो, बांस चाहे गुलाब के फूलों के पास बीच में हो, वो सुगंध नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर अवगुण है।
एक तो अवगुण वही है कि वो इतना कड़ा है कि उसके अंदर से कुछ पार नहीं होता है, वो कड़ापन यानी अपना अहंकार।

हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। अरे समाज में कोई इतना बड़ा हो गया और गरीबों की हमारे समाज की सेवा नहीं करता है, अरे तू कब तक रहेगा, चार दिन रही चांदनी आखिर अंधेरी रात। पद का मद तुम कहां तक लेके चलोगे। गुरु नानक साहब कहते कि सब दिन हो तन एक समान, लेकिन फिर वो तुरंत गुरु नानक साहब सेड कि एवरी डे इज ए गोल्डन डे, सभी दिन स्वर्ण दिन है। किसके लिए? संत के लिए। संत कपड़ा पहनने से नहीं होता, रंग बनाने से नहीं होता है, संत की क्वालिटी हृदय के अंदर होती है, विचारों के अंदर होती है, दया के अंदर होती है। संत वो बैठा है और कोई आ गया तो कहेगा भाई रोटी खा के जाना, ऐसे मत जाना कि नहीं समय नहीं है, समय नहीं दीदा ये तो प्रसाद ले जा खाते जाना बेटा, वो संत होता है। तो आ गया अभी क्या करें, चलो आ गए, कैसे आए भाई, कोई काम है कि नहीं, बस जाओ। वो संत नहीं होता है, खिलाओ, जितना खिलाओगे उतना तुम्हारा तप बढ़ेगा, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी। तुलसी दास जी कहते हैं कि तुलसी कर पर कर कर, अरे कि हाथ के ऊपर हाथ करो तुम देते जाओ, तुलसी कर पर कर कर, पर कर कर न कर, नीचे कर मत करना। तुलसी कर पर कर कर, पर कर कर न कर, ता दिन पर कर कर उस दिन मरण कर, है कि नहीं। मांगन मरण समान है, जो कोई मांगन जाए उनसे पहला वो मरा जिसके मुख से निकला ना आए, वो संत की पहचान होती है। चाहे ग्रस्त में भी हो तो भी देना होता है, दया होती है, और वो माताओं के अंदर जाता होती है। दो तीन आदमी एक साथ रह गए तो कोई आते तो देखते घर के अंदर को जाने के, भूकंप हुआ अभी, पेंट कहीं पड़ा, समझ वो मोजा कहीं पड़ा है, वो पड़ा है, आएगा उसका पानी पियोगे सा, अच्छा पानी लाता हूं, दूसरा क्या कहीं, और जहां बहने हैं माताएं हैं घर की शुद्धता है, कोई भी मेहमान आता जल पिलाएंगे कुछ ताके, बिना कहे ही पूछते नहीं पानी पियोगे, तो कहीं दारू पाए तो कहीं सही बात है कि नहीं। नारायण नारायण नारायण। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। उसका कड़कापड़ा जो है वो उसका स्वाद नहीं ले सकता है। दूसरा, मान लो किसी रूप से अगर सुगंध अंदर चली भी जाए तो अंदर में है पोल, पोल है क्या नहीं, अब वो पोल में कहां रुकेगी वो सुगंध, वो तो अच्छा वो पोल है तो वो सुगंध आगे जाना चाहती है लेकिन उसके अंदर कपट की गांठ है, गांठ है क्या नहीं, बांस में कपट की गांठ, बीच में है पोल, और अगर उसको कह दो तेरे अंदर तो पोल है, थोता चढ़ाने बाजे घना, भरा तो जबके नहीं जबके सोई आधा, घोड़ा तो भूके नहीं भूके सोई गधा, अगर इतना कह दिया तो उसको क्या होता है, गुस्सा आता है। तो जब वो बांस अपनी जवानी पे आ जाता है तो हवा आती है तो रगड़ता है घिसता है तो उसमें आग लग जाती है, सब वनस्पति को जला देगा। ऐसा हमारे समाज में हमारे समाज के अंदर पैदा होए तो क्या करेंगे उसे। बांस होगा भूमि पर दुखी हुई वनराय, एक दिन ऐसा आएगा सबको देगा जलाए। और आप जैसे धर्मात्मा, आप जैसे संत आत्माएं, आप जैसे जिनके माता पिता की पूर्ण आशीर्वाद है, गुरुदेव की पूर्ण आशीर्वाद है, आप अभी यहां बैठे हो वो आपके पूर्वजों की कमाई है, अभी खा रहे हो वो पूर्वजों की कमाई है, अब तुम तुम्हारे बच्चों को क्या दोगे वो फिर तुम्हारी कमाई है। तो कहा कि चंदन उगा भूमि पर और खुशी हुई वनराय, एक दिन ऐसा आएगा कीमत देगा बढ़ाए। जहां चंदन उगने लगता है तो पूरे फॉरेस्ट उसकी
रक्षा हो जाती है, यहाँ पेड़ नहीं काटना, यहाँ चंदन।

0: अनुग्रह है। तो ऐसे हम चंदन चाहते हैं हमारी समाज के अंदर, माता जने तो ऐसा जन के दाता के शूर, नहीं तो रहिए बांजरी मत गमाइए नूर। क्योंकि तीन सजावट देश को, हमारे इस भारतवर्ष की शोभा हमारी माताओं के द्वारा जो संतान पैदा होती है उसकी है। तीन सजावट देश को शक्ति संत और शूर, और तीन लजावत देश को कपटी कायर और करूर। बात चल गई थी आज कहीं कि हमारे यहां के डॉक्टर अमेरिका जाते तो उनको फिर स्टडी करने लेनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि अमेरिका हमारे यहां के डॉक्टरों को कितने पैसे देकर के, फर्स्ट क्लास का टिकट देकर के 5 दिन के लिए भी बुलाते हैं। कितने डॉक्टर्स जाते हैं हमारे मुंबई से, अहमदाबाद से, राजस्थान से, वहां की यूनिवर्सिटीज और वहां के डॉक्टर्स उनको बुलाते हैं। क्योंकि भारत ज्ञान है, भारत ज्योति है, भारत विश्व का गुरु है हर एक फील्ड में, आध्यात्मिकता ही नहीं हर एक जगह में। आविष्कार भारत में जो किया हुआ है, साहित्य कहीं होगा, अब जो है ये टेक्नोलॉजी जो है, लेकिन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में भी ब्रेन जो है हमारे भारतीयों का, ऐसा ब्रेन कम ही बार मिलेगा। आज से 15 साल पहले जर्मनी ने वीजा फ्री कर दिया था और हमारे अच्छे से इंजीनियरों को वहां काम दे रहे कि आप आइए और हमारे लोगों को सिखाइए। यू नो दैट, आपको पता नहीं होगा। तो भगवान अपने बगीचे के अंदर जा रहे हैं और सभी पेड़ पौधों को हाथ लगाते हैं कि कैसे हो बच्चा, कैसे हो बेटी, कैसे ठीक हो। बांस कहता है कि भगवान मेरा भी प्रणाम स्वीकार करिए और ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे भी आपके बगीचे में रहने की जगह दीजिए। भगवान कहते हैं कि ये बांस, तू मेरा बड़ा प्यारा है, तू मेरे बगीचे में हमेशा हमेशा रहेगा, मैं सबसे ज्यादा तेरे से प्यार करता हूं, बोल। फिर भी कपटी के मन में तो कपट रहता ही है, डाउट कभी आउट नहीं होती है। एक दिन आया, भगवान सुबह उठ करके दोनों हाथ कमर के पीछे, बांस का कलेजा जो हार्ट बीट जो है वो 165 पे पहुंच गई। बांस कहता कि भगवान आज आपके हाथ, आपके हस्त कमल हमेशा आशीर्वाद के रूप में आता है, आज पीछे कमर पे क्यों रखे, पीठ पे चल के क्यों रखे हो। भगवान कहते हैं कि बांस, आज मैं तेरे को कुछ दर्द पहुंचाऊंगा। बांस रोने लगा, मैंने क्या गलती की प्रभु, मैंने क्या गलती की, क्यों क्या करोगे प्रभु, यहां से निकाल दोगे। कि नहीं नहीं, मेरे बगीचे में तेरा हमेशा हमेशा के लिए तेरी जगह है, लेकिन आज मैं तेरी भुजा काट दूंगा। मेरी भुजा? भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन इतना तो मुझे बता दी कि आप मेरी भुजा क्यों काट रहे हो। भगवान कहते कि हे बांस, मुझे तेरी आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता आपको? हां बेटा, जो कार्य मैं नहीं कर पाता हूं वो कार्य तुम कर पा सकते। वो कौन सा है भगवान? कि बेटा, मानव जाति का हृदय पत्थर की तरह हो गया है और उसको मक्खन की तरह इतना मुलायम करना है, वो मैं कैसे करूंगा? भगवान आप ही कर सकते हैं। कि नहीं बांस, तुम ही कर सकते हो बेटा, तो मुझे और समझाइए मैं कैसे करूंगा। मेरा हाथ काट दीजिए, आप दोनों ही काट दो, आप मैं आपके अधीन हूं। कि बेटा, मैं तेरे इस भुजा का एक सुंदर बांसुरी बनाऊंगा और उसके अंदर मैं स्वयं मेरे प्राणों की आहुति दूंगा, लेकिन मेरे प्राणों की आहुति की जो ध्वनि निकलेगी वो ब्रह्मांड के अंदर जो कहा है नाद रूप पर ब्रह्म वो प्रकट होगा और हर एक के हृदय के अंदर जो कठोरपन है वो मिट जाएगा और कोमल हृदय हो जाएगा। बोल सतगुरु देव की। तब से ये बांसुरी बनी भाई, ये भगवान की बांसुरी, ये भारत का असली वाद्य जो है हमारे संस्कृति का, इसीलिए भगवान के हाथ में बांसुरी रहती है, सरस्वती माँ के हाथ में ग्रंथ रहता है, ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रहते हैं। काट दिया, बांसुरी बन गई। भगवान नित्य नियम से हमेशा उस बगीचे के में फिरते हैं। एक दिन फिर ऐसे हाथ रख के भगवान आ रहे थे, बास ने सोचा कि आज और कुछ न कुछ दाल में काला है, भगवान आज और क्यों हाथ आप अपनी पीठ पे रख के आ रहे हो कि बेटा आज मैं तेरे को बहुत भयंकर दर्द पहुंचाऊंगा, मैंने क्या पाप किया, मैं कुछ नहीं करता हूं, केवल आपके दरबार में आपके बगीचे में खड़ा हूं और आपके दर्शन की लालसा है। हां बेटा, लेकिन फिर भी मैं आज तेरा जो मूल जो है, गोड जो है, उसको काट दूंगा। तो भगवान कहते हैं ये तो अब आज कहता क्यों क्या करोगे कि तेरा जो गोड है वो काट दूंगा। अच्छा, मुझे समझाइए काटने का कारण क्या है कि बेटा ऐसा है कि हिमालय की कंदराओं से जहां पानी बर्फ की चट्टाने पिघलती हैं वो पानी जो आता है वो वहीं कहीं नीचे चला जाता है और इधर उत्तर की तरफ पूर्व दक्षिण की तरफ जहां भारत है अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं है, जानवरों को मानव को पीने के लिए पानी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उसे। हाँ बेटा, ये तेरा इतना ज्यादा गोड है ना, उसको काट के मैं जहां पानी की धारा आती है वहां रखूंगा, तो एक चट्टान से दूसरी चट्टान के आगे रखूंगा तो पानी पूरा भारत की तरफ से आएगा, इसलिए तू ही है, दूसरा तो बिखर जाएगा। तो बांस को कितना ही पानी में रखो वो खराब नहीं होता है, तो वो प्राण रूपी जल हमें वापस पिलाता है। तो ये बांसुरी नाद योग, नाद रूप पर ब्रह्म, उस पर ब्रह्म का स्वरूप का, लेकिन हर एक की बात नहीं है ये बांसुरी, क्या छोटा सा ये लकड़ी है, छोटा सा डंडा है, मने दे तो मैं तो करूं मां टू टू के हां बाबू जी बहुत बढ़िया बनाए रेवा दबे गण। लेकिन जब अच्छा कोई कलाकार उसको कृष्ण की तरह अपने होठों पे लगाता है तो बांसुरी भी खुश होती है, यहां अब भगवान मेरे से प्यार कर रहे हैं और भगवान का प्राण जो है मेरे अंदर प्राण संचार हो रहे हैं। हम सभी भगवान की बांसुरी हैं, हमारे अंदर जो प्राण संचार हो रहा है वो उसी पर ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ प्राण हमारे अंदर है। जब तक भगवान हमारे को बनाए रखेंगे हम बना रहेंगे, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके मुख से बांसुरी हटा के ले जाए। नाद, नाद योग, 10 प्रकार की नाद होती है, 10 इंद्रियों से जुड़ी हुई होती है और 10 इंद्रियों के परे जब नाद खुलती है उसको सोहम कहते हैं, आई एम दैट एंड दैट आई एम। उसी नाद को सुनने के बाद योगी की चित्त वृत्ति का निरोध होता है और फिर वो ध्यान में जाता है, नहीं तो वो बुगला होता है, एक पैर पे खड़ा रहता है, ऐसी दृष्टि से देखता है कि जैसे मच्छी आई या मेंढक खा जाऊंगा। एक पैर पे वो खड़ा क्यों रहता है, एक पैर पे क्यों खड़ा है, दोनों पैर पे खड़ा रहना चाहिए बताओ। एक पैर पे वो इसलिए खड़ा रहता है कि मच्छी आ गई तो दूसरा पैर पानी से निकाल के चलेगा तो मच्छी चली जाएगी, इसलिए रेडी रहता है कि कदम लगा के खा जाऊंगा। जीवों के अंदर भी तो कला तो है ना, ये कलाएं जो भगवान ने प्रकृति के साथ जोड़ी हैं अपना जीवन जीने के लिए, तो आज हमारे इस सत्संग के अंदर बहुत अच्छे हमारे कविराज आए हैं, काई ना भूल गयो, ओहो इंद्र दान रत्नम, बोलो इंद्र को भी दान देने वाला है, वो रत्नों में भी रतन, वो रत्नु आ गए हमारे पास, मेरे रत्नु बहुत चिले, हाँ तो रत्नु के अंदर रत्न होता है और तो कहाँ रहेगा, रत्नों की खान में रत्न निकलता ना। सो आई वुड इंट्रोड्यूस यू टुडे, आई स्पोक अबाउट नाद योगा एंड द स्टोरी मेनी ऑफ यू नो ऑफ आई यूज टू टेल अबाउट बंबू एंड द क्रिएशन ऑफ द फ्लूट, मीनिंग ऑफ द साउंड एंड द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट इज अ मास्टर, करत करत अभ्यास प्यारे जड़मत होत सुजान, रस्सी की आवत जावत सिल पर पड़त निशान। सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अभ्यास अभ्यास कौंते अभ्यास, हे अर्जुन हे कौंती के पुत्र सन ऑफ द कौंती, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बट प्रैक्टिसिंग यू कैन डू मैनी मैनी ईयर्स, बट इफ इनसाइड यू डू नॉट हैव दया, योर प्रैक्टिस विल नॉट बी सक्सेसफुल। इसीलिए कहा है गुरुदेव बिना कार्य न सरे, कोटि उपाय करे कोई चाहे न भव सिंधु तीरे, गुरुदेव बिना कार्य नहीं सरे। तो वही बांसुरी वही नाद जो कि पता नहीं कितने अरबों खरबों वर्षों पहले, युग युगांतरों पहले ये नाद ब्राह्मण से उत्पन्न हुई, वो आज भी हमारे साथ में है, उसको ही पहचानना, भगवान को ही पहचानना है। तो हमारे इंद्रदान जो है वो आपको, ही विल प्ले फॉर अस ए फ्लूट एंड दिस फ्लूट इज दैट वन विच वॉज मेड ओरिजिनली बाय मैनी मैनी युगास एगो। बोल श्रीदीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, ओम शांति शांति।
1: एक लाइन बोल दो,
0: बोलो 10 लाइन।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश,
0: फ्लोर इज योर्स, उधर थोड़ा उठने मुंडो कर
1: दो
0: कैमरा की तरफ। हाँ,
1: आई विश टू थैंक मिलियंस ऑफ टाइम्स टू स्वामी जी फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल सो प्रोफाउंडली एनालाइजिंग the creation of the universe and linking it and bringing it ultimately to the flute which I wish to play before all of you. And I am very thankful to him for inviting me here to deliver this recital of the flute. Thank you, Swamiji.
0: Welcome.

0: सी राग थी
1: ये कुछ सारंग राग
0: क्या कोई गीत था
1: सारंग राग थी और उस पे आधारित है गीत छोटी छोटी गैया छोटे छोटे श्री कृष्ण
0: चारण राग है चारण राग
1: नहीं चारण नहीं था सारंग
0: अच्छा सारण
1: सारंग
0: समझ गया आप चारण हो इसलिए
1: नहीं चारण कोई राग
0: अच्छा
1: सारंग राग
0: एक और कोई राग बताओ एक्सप्लेन द पीपल व्हाट यू आर सिंगिंग इन इंग्लिश सो दैट our international audience understands because
1: it was based on rag sarang and it is based upon that I just played the flute about a bhajan about Lord Krishna which says choti choti gaiya chote chote gwal they are small cows and so are the cowherds gwale छोटे से हमारे मदन गोपाल सो लॉर्ड कृष्णा टू इज ए स्मॉल पर्सन सिमिलरली सेज दैट घास खाए गैया द काउज ग्रेज ग्रास घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल एंड माखन खाए हमारो मदन गोपाल
0: नेक्स्ट राग कौन सी है क्या गाओगे बताओ
1: अब बाप जी जो निकल जाए उसके बाद में बताऊंगा नहीं पहले बताना बड़ा कठिन है मैं चाहूं वो राग निकल ही नहीं पाते
0: कौन सी राग
1: फिर भी ये भैरवी भैरवी को टच करेगी भैरवी अब भजन कुछ नहीं है बहन जी इतना मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूं सही बात हाँ ऐसे ही
0: चिराग चलो
1: भैरवी को टच कर ओ, कोई गीत नहीं ऐसे ही
0: हाँ भैरव जी को बुलाओ आप तो हाँ काले भैरव को दौड़ो
1: और उसमें फिर आखिर में भैरवी आधारित है गीत प्रेम की गंगा बहाते चलो जोत से जोत जगाते चलो उस पे आ जाऊंगा फाइनली

0: गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीदीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: श्री श्री देवेश्वर महादेव की
1: जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।

0: ki jai. Shri Kabir Das Ji Maharaj ki jai.
1: ओम शलकपुर जी महादेव की जय. देवाद देव देवेश्वर महादेव की जय. श्रीदीप नारायण भगवान की जय. हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय. विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय.

स्वरूप गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमुहूर्त पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मौक्तमूलम् ॐ शान्ति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनम्

0: गुरुप्रजाभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्य नमः। उमामहेश्वराभ्य नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्य नमः। शशिपुरन्द्राभ्य नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ श्री बुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय। देवेश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट स्वामी महानंद
0: भगवान की जय।
1: सर्व ओम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमान स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज की
0: जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चल लोटा और भी ले लो दो चार।
1: पर पहले पुत्र चढ़ाऊं।
2: ये जोधपुर संभाग में दो ही है बिलड़ा।
1: हाँ बिलड़ा एक ही है लिरोपुर।
0: ॐ ऐं गमन्दा देवताणि धर्माणि ब्रह्मण्याजना देहेनाकः महिमाना शशन्धरा पूर्वे सात्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय बृहस्यै नमो वयं विस्मरणाय कुर्महे सम्यक्।

0: కామాయమయం కామేశ్వరో వేశ్వరో దదాతు కుబేరాయ విశ్వనాయ మహారాజాయ మహావైష్ణవంద్రియాశ్చాత్ सार्वभौम सार्वयुषण दातार्व पृथ्वी समुद प्रियंत लोटा एक एक और भी दे दो आप लोटा लो और क्वेश्चन नहीं हमारा जाओ प्रेमन अवतारपुरी निरंजनपुरी जी ओम द्यो शांतिरंतरिक्षां ओम शांति पृथ्वी शांति रावा शांति रोषधया शांति वनस्पति शांतिर विश्वे देवा शांति रेव शांति सामा शांति
1: गुड
0: हाँ मंगलेश मंगलेश
1: मंगलेश
0: मंगलेश प्लीज
1: हाँ गुड
0: गुड किचन किचन किचन
1: बस यही कर रहा
0: है ये माला
1: दीपक लगाओ
0: हाँ बस दीपक को दूसरा कर ये माला आपके उधर से माला ऊपर में
1: वो तो दो करो जाने भी नहीं
0: हाँ और हाँ हाँ तो जो बड़ी हो जाएगी और बंधवा दो उसको करके बांध दे ये पकड़
1: लो
2: ये नहीं बंद है बेड़ी
1: छोड़ दो
0: तीन चार जने साथ में खड़े रह करके
1: फिर एक और गला
3: और माला भेगी उन्हें जोड़ो है
2: एक माला दो लगाऊं
3: दो दो
2: ना ये भी लगाऊं
3: आओ
2: है
3: आओ
2: ये माला नहीं भी लगाऊंगा आप जी
1: बस अबे गरीब
3: बस ठीक हो गया
2: फिर ऊपर ऊपर टांग दो
0: भूषण जी
4: जी सर
0: गुरु जी के जल चढ़ाते हुए
4: जी
0: अवतारपुरी इधर आ जाओ सामने से जल चढ़ाते हुए तीन चार सौ
3: लोटे
0: ये भी माला हो जाएगी ऊपर में
3: एक वो उन डाले लगाओ पंतिकल का हाँ हाँ वो आगले
0: आप बाजी इधर सामने आकर चलाते हुए सामने इधर हाँ दिखते हुए ओम द्यो शांतिरंतरिक्षां शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधया शांति

0: शमीहसे ततोऽभ्यन्न कुरु प्रजाभ्य अभ्य सुशान्तिर्भवतु। नमः
1: पार्वतीपतये हर हर महादेव।
0: दीप नारायण
1: भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय।
0: सम्राट माधवानंद जी
1: भगवान की जय।
0: महामंडलेश्वरी योगी राज परम पिता परमेश्वर परम पूज्य
1: सद्गुरुदेव की जय।
0: सत्य सनातन
1: धर्म की जय। उधर गुड में
0: पार्वती मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अलकपुरुषा महादेव की जय। देवपुरुषा महादेव की
2: जय।
0: दीपेश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की
2: जय।
0: शुभ्र महामंडलेश्वर योगी राज परम पिता परमेश्वर परम पूज्य सद्गुरुदेव
2: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
2: जय।
0: आज के आनंद की
2: जय।

0: हो गुरुदेव,
1: ओ गुरुदेव
0: महाप्रभु जी,
1: महाप्रभु जी,
0: आप ही ब्रह्मा, यू आर द ब्रह्मा,
1: सी ब्रह्मा,
0: दैट ब्रह्मा हु इज द क्रिएटर्स,
1: ब्रह्मा, který je stvořitel,
0: ब्रह्मा, विष्णु, नो द गॉड विष्णु, मेनी मेनी टाइम्स, मेनी मेनी, ऑल्सो लाइक वाट कॉल बी द कृष्णा,
1: si Bůh Višnu a také ho známe pod jménem Krishna.
0: Aap hi Brahma, aap hi Vishnu, aap ho Kailas Kevasi, and O Gurudev, you are also residing in the Kailas.
1: O Gurudev, ty také přebýváš na Kailáši.
0: You are residing there.
1: Tam žiješ.
0: Aap ho Narad, aap ho Sarad, aap ho Ses Sukrasi. Aap ho Narad, aap ho Sarad, aap ho Ses Sukrasi. Aap ho hi, aap ho Dhyani, aap ho Gyani, आप हो योग प्रकाशी, यू आर इज ब्रह्मा, आप विष्णु, एंड यू आर कैलाश, लिविंग इन द हिमालया इन कैलाश. आप हो नारद, ऑल्सो यू आर द नारद ऋषि,
1: सीता के नारद ऋषि.
0: आप हो सारद, एंड आप हो सेस शुक्राशि. सेस शुक्राशि is where this snake, very big, under the ocean, and there where Vishnu is residing.
1: Sesukrasi je ten velký had pod oceánem a tam žije Vishnu.
0: Ses. And the ses means also what remains after all, but still there remains.
1: A ses je také to, co potom všem zůstane.
0: आप हो ध्यानी, आप हो ज्ञानी, आप हो योग प्रकाशी. आप हो ध्यानी, हो महाप्रभु जी,
1: ओ महाप्रभु जी,
0: आप ही ध्यानी, यू हैव मेडिटेशन, यू नो दैट, ओ देवपुरी जी,
1: माश मेडिटेशन, znáš to, ओ देवपुरी जी.
0: आप हो ज्ञानी, यू आर द नॉलेज,
1: सी पोज्ञानी.
0: आप हो योग Prakasha, and you are the light of the yogas.
1: Asi světlo yug.
0: Mahaprabhuji is saying to Devpurijis.
1: To říká Mahaprabhuji Devpurijim.
0: Aap ho dhyani, aap ho gyani, aap ho yog prakasi. Aap ho dev sab devi, आप हो सूर्य प्रकाशी, यू आर ऑल्सो माई लॉर्ड, यू आर द शक्ति,
1: मुई पाने से तक शक्ति,
0: एंड यू आर ऑल्सो भक्ति,
1: भक्ति
0: देवी,
1: भक्ति देवी.
0: आप ही सूर्य प्रकाश, ओ देवपुरी जी, यू आर द सूर्य, द सन प्रकाश.
1: ओ देवपुरी जी, ते से तक स्लुंसे.
0: आप हो वेदों के ज्ञाता, आप हो भक्त उर्वासी. आप हो वेदों के ज्ञाता, ओ महाप्रभु जी, यू नो द वेदास, यू नो द वेदास,
1: ओ महाप्रभु जी, ति ज्ञाश वेदि.
0: आप हो भक्त उर्वासी, एंड ऑल द भक्तास आर इन अवर हार्ट.
1: Všichni baktové jsou v našich srdcích.

0: té pravdy ty jsi.
1: Apho bhakta urvasi, and you are Gurudev in our heart.
0: A Gurudev jsi v našem srdci.
1: Urvasi is the heart.
0: Urvasi je srdce.
1: Apho vedon ke jata, you are knower of the Vedas.
0: Znáš Vedy.
1: Apho bhakta urvasi. Apho sat naam ke data. And you are the name of the God. Everything you are giving us.
0: A jsi jméno Boží a všechno nám dáváš.
1: Sat naam ke data. Sat means the truth.
0: Sat je pravda.
1: Apho nij savrup ke gyata. And you are that of the gyata, the knowledge, knower.
0: I see znalec.
1: You are the form of the knowledge, gyata.
0: Jsi podobou poznání.
1: Namo, om, namo, prabhu, deep, pranama, brahmananda, urvasi. And about Brahmananji, it is Om Namo Prabhu Deep Pranam. So Om Mahaprabhuji, Prabhuji said, Pranam, salutation. Brahmananda Urvasi, Brahmananda, Brahmananda, Brahmananda. There you are residing, O my Dev Puriji, Gurudev.
0: Takže přebýváš tam, můj Dev Puriči, můj Gurudéve.
1: Namo, om namo, prabhu dýpaya vinasi, apho brahma, apahi vishnu, apho kelas kevasi, apho narad, apho sarad, apho ses sukrasi, apho dhyani, आप हो ज्ञानी आप हो योग प्रकाशी आप हो देव सब देवी आप हो सूर्य प्रकाशी आप हो ब्रह्म विनिर्वाणी आप हो चहूं आपके वासी चहूं इन ऑल डायरेक्शंस यू आर देयर
0: सी वे všech směrech
1: आप हो वेदों के ज्ञाता आप हो भक्त उर्वासी आप हो सतनाम के दाता आप हो निज स्वरूप के ज्ञाता ओम नमो प्रभु दीप प्रणामा ब्रह्मानंद उर्वासी सत्य सनातन धर्म की देवादि देव अलकपुरी जी महादेव की देवादि देव देवेश्वर महादेव की परम आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय सत्य सनातन धर्म स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरिओम हरिओम
0: गुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय

0: When the clouds dispersed, water covered the thirsty land. This was the first verification of the rain harvesting project. The water flowed straight to the lake. The blood of life has been harvested. This is now a reservoir of life, not only for the ashram, but also for many villages in this thirsty region. Now was the right moment to reforest the hill with soils dug out from the lake. The hill will hold a tree. A tree will hold the hill. This is the symbiosis of sustainable development. As much as the rain was a blessing for the desert, it was also a symbol of blessing for the thirsty human soul, a blessing from an encounter with the king of spirituality, Holy Guruji. Sri Madhavanandaji, Swamiji's Guru, is both the rain cloud and the sun, an eternally fresh breeze of saintly presence.
1: Isiliye satsang karna chahiye aur संतों के दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव का स्मरण सर्व पापों को धो के अंतकरण की शुद्धि होती है। अंतकरण शुद्ध करने के लिए प्रभु प्रार्थना और प्रभु का स्मरण और गुरुदेव की कृपा। लास्ट में कहा है, गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम। जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है। इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। ये भजन गाते हो, ये वेदों का सार है, ये तुम्हारे हृदय में वेद का सार यानी ज्ञान प्रकट होता है। साक्षात परमात्मा महाप्रभु जी की मुखारविंद से जो वचन निकले हैं वो वेदों से भी अधिक है। वो भव सागर से सहज तार लेते हैं।
0: The following day, there was the festival of the dawn of consciousness, the light of consciousness festival, the day of Guru Purnima has dawned. Guru Purnima is the day of Gurudev's glory and the ancient verses of Guru Gita that are his hymn. All those who seek knowledge need a teacher, and one who seeks spiritual enlightenment finds a guru, a master, one who knows Atma and Paramatma, soul and God. India has kept the spiritual knowledge alive and attainable to all through direct interaction between Guru and his disciple. This relationship always assumes the full commitment of the master and the surrender of a disciple.

0: So in our scriptures, in our teachings, in our way of life, there cannot be any other great person than Guru in the world for the disciple and for the all the followers of the yogic way of life.
1: Tamso ma jyotir gamaya. Lead us from the darkness to the light. The first, very first day when the first resonance was awoken in the endless universal consciousness, where the consciousness was dormant, the first was that resonance, the sound that was the Om, and through that sound, the second element, the second tattva, besides the akasha, the fire element was created. And that first very moment is that is was the beginning of the Guru Purnima.
2: गुरु का मतलब है गुमन अंधकार रूमन प्रकाश. अंधकार मेट के अपनी भूल है, अज्ञान है, वही अंधकार है, उसको मेट के प्रकाश देने वाले, सत्य ज्ञान देने वाले, अज्ञान को हटाने वाले, वही सतगुरु होते हैं. गुरुदेव को पहचानने वाले बहुत थोड़े भक्त होते हैं. गुरुदेव को पहचाने वो स्वयं गुरु रूप, परमात्मा रूप हो जाते हैं, और गुरुदेव की कृपा होती है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, लोक परलोक का ज्ञान हो जाता है. स्वयं भगवान ने मानव को पवित्र होने के लिए, मानव को सुखी होने के लिए ये गुरु पूनम का पर्व बनाया है.
3: Everybody wants to personally approach Holy Guruji and Swamiji, to see him and to be seen.

0: In this country, wherever Gurudev appears, he is accepted as a source of joy, a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए आत्म ज्ञान यहीं मिले और देश नहीं कोई। ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश। तो वी नीड ऑल टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। We need to protect the Sanatana Dharma, and we should and we must protect all religions. No religion should be discriminated. No any culture should be discriminated. No any country should be discriminated. We have to respect them as they are.
0: Finally, the day of ceremonial bathing.

0: परमार्थ जिनका धर्म है, संकल्प अधर्म विनाश है। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की, धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की।
1: बोलिए महेश्वरानंद महाराज की।
2: After the dynamic visit to Maharashtra, here we are again at the Jadan Ashram, in a place of peace, a peace needed for the depth of working with oneself, for the depth of yoga. Here, we come closer to the inner silence out of which all important answers arise. This ashram is a garden, an oasis of life.